त्यों मेरे मनरा मैया भर को जैसे खीर बाला चातरक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बाला त्यों मेरे मनरा मैया साधक सिद्ध सगल मन।